0: surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

तो भाई आज इट हैपेंस में एक बात आपसे कहनी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी जिंदगी के लिए, कि काम वाम तो होता ही रहेगा, वक्त निकालिए, मौका निकालिए और निकल पड़िए घूमने। जी हाँ, वक्त की परवाह छोड़ के निकल पड़िए घूमने के लिए, क्योंकि आपको हक है भाई सड़कों से बात करने का, पहाड़ों की खामोशी सुनने का, जिंदगी को जीने का, कल को करीब से देखने का आपको हक है। इसलिए ये मत सोचिए कि यार अभी इतना सारा काम है, कभी मौका मिलेगा तब घूमेंगे। देखिए घूमने के लिए ना हम सबकी परफेक्ट उम्र यही है। बहाने तो जिंदगी में बहुत मिलेंगे ना घूमने के, लेकिन घूमने का रीजन जो है वो यही है। अपनी जिंदगी से मिलिए, अपने आप को समझिए, अपने वक्त को जानिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस में आप सताक्षी के साथ हैं दोस्तों रेडियो प्रस्वानी 1701 एफएम पर। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना, आपने भी जरूर सुना होगा यार, पैसा वैसा कुछ नहीं होता है, रिश्ते तो दिल के होते हैं, है ना। मतलब पैसे का क्या ही गुरूर करना और पैसा कमा के क्या ही कर लोगे, दिल को बड़ा रखो। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि भाई पता है कि आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि ये कहने के लिए भी पैसा होना चाहिए। पैसे की जरूरत क्या होती है ना, ये उस इंसान से पूछिए जो एक वक्त भूखा सोता है। पैसे की जरूरत क्या होती है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बाहर जाके उन लोगों से पूछिए जो दवाई के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं या जिनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। पैसे की कीमत क्या होती है, ये कोर्ट रूम के बाहर जाके देखिए जो अपने लिए सही लॉयर हायर नहीं कर पा रहे हैं। पैसे की कीमत क्या होती है, ये उनसे पूछिए जो ठीक से दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लाइफ में पैसा बहुत जरूरी है और आज हम उस युग में हैं, आज हम उस जनरेशन में हैं जब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहले कितने ही सोर्सेज होते थे पैसे कमाने के, बहुत लिमिटेड। लेकिन अगर आज हम बहाना दे रहे हैं कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो ये वाकई बहाना है, क्योंकि आज बहुत बहुत सोर्सेज हैं हमारे पास। और हर हाल में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए, लाइफ स्टाइल को इंजॉय करने के लिए आपकी लाइफ में पैसे की दरकार है, बिल्कुल है। बस मैं जो कहती हूँ वो ये कि सिर्फ पैसे को ही प्रायोरिटी नहीं देनी है, यानी कि सिर्फ जिंदगी भर कमाते ही रह गए और ये लगा कि जिंदगी तो जी नहीं है, जिंदगी भी जीते चलिए। और पैसे की जो लोग कहते हैं कि वैल्यू नहीं है, तो भाई बहुत वैल्यू है, जिंदगी के हर कदम पे है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए इसी बात पर और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701।

सो वेलकम बैक, इट हैपन, सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर। आज एक बहुत ही बढ़िया बात याद आई तो सोचा आपके साथ बांटी जाए, और ये तो बांटना बनता है। यू नो, हम सब मॉर्निंग में जब उठते हैं तो भाई घर से निकलने से पहले प्रेयर करते हैं, है ना। आप जिस भी ईश्वर में माने, जिस भी ऊपर वाले को माने, लेकिन प्रेयर्स तो करते हैं हम सबकी जिंदगी में। भाई प्रेयर्स तो शामिल है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं कोई है जिसने हमारी बागडोर संभाल रखी है, हमारी डोर को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है, और उसके हाथ में काफी हद तक हमारी चीजें हैं, है ना। तो बस ये कहना था कि आज अपनी प्रेयर में एक चीज और शुमार कीजिएगा, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिएगा कि जिसने भी आपको दिया है उसे 100 गुना ज्यादा ऊपर वाला दे। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई अपने लिए प्रार्थना करने से फुर्सत मिले तब तो हम दूसरे के लिए करेंगे, बट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही प्योर प्रेयर होती है कि यार जिसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है, हमारी हेल्प की है, उसको 100 गुना ज्यादा मदद मिले, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए, से प्रॉस्पेरिटी मिले। और यार तंग भी तो बहुत लोगों ने किया है हमें, है ना। हाँ, तो देखिए अभी इंटरेस्ट आ गया ना, आप सब कहेंगे बस आर से सताक्षी ये प्रेयर करेंगे इसीलिए कहा था कि आपके साथ शेयर करनी है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते, ये गाना सुनिए और सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर।

इट हैपेंस, इस शो को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो प्रसारणी 1701 एम पर। अक्सर मैंने ये देखा है कि अगर आप बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएं, आसानी से किसी को मिल जाएं, तो लोग आपको बहुत सस्ता समझ लेते हैं। वक्त, एहसास और अपनी कीमत, इन तीनों को वही इंसान समझ पाता है जिसने जिंदगी में ना इंतजार किया हो। जो इजीली लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हो जाता है, दुनिया उसे बहुत बहुत ज्यादा सस्ता समझ लेती है। और इसीलिए खुद की एक सीमा जरूरी है, खुद का एक बाउंडेशन जरूरी है, खुद के लिए एक बाउंड्री लाइन खींचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीमा जब आप अपनी तय करते हैं तब आपकी कीमत बनती है, है ना। और अपनी कीमत बनाना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को बहुत सस्ते ना नजर आए, वरना फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है और आप कहते हैं कि यार हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं किसी के साथ। तो कभी कभी ज्यादा अच्छे होना भी खुद के साथ बुरा करना होता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं, जी हाँ, रेडियो प्रसारणी 1701।

लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया थॉट आज, मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ी। हाँ, और मैंने सोचा आपके साथ बांटूं। एक्चुअली आदत है ना कि सुबह उठते ही कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने की आदत डाली है मैंने। और ये मैं पहले कहती थी, सुनती भी कई बार थी कि सुबह सुबह अच्छा पढ़ना पूरा दिन बना देता है, और जब से मैंने ये शुरू किया है सच में मज़ा आने लगा है। तो आज मैंने एक थॉट पढ़ा, आज बेसिकली कुछ थॉट्स ही शेयर कर रही थी, पढ़ रही थी और लोगों से बांट भी रही थी। तो मैंने पढ़ा और वो मैंने बचा कर आपके लिए रखा कि यार जिंदगी में इतने छोटे बनो कि कोई भी आपके साथ बैठ सके, कोई भी अगर आपके साथ बैठ सके, अपने दिल की बात कर सके, आप उससे अपनी बातें शेयर कर सकें और उसे आपको देखकर डर ना फील हो, भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो। और अपने कामों से इतना बड़ा बनिए, अपने कामों से आप इतने ऊपर उठिए कि जब आप उठें, खड़े हों, तो फिर कोई भी बैठा ना रह सके, है ना? कितनी अमेजिंग बात, छोटी सी दो लाइन्स जिन्होंने हमारी जिंदगी की पूरी सच्चाई हमारे सामने रख दी। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं ना कि सुबह सुबह अच्छा पढ़ा करिए। चलिए ना पढ़ें, अच्छा सुना करिए, और ना भी सुने तो सताक्षी को सुन लिया करिए, क्योंकि भाई हम भी आपसे सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ, ये फिलहाल एक और ट्रैक मेरे साथ एंजॉय कीजिए और यूं ही सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्फानी 1701।

तो दोस्तों ये आज इट हैपेंस पर मेरा आपके साथ एक बढ़िया सा और साथ था जो आपको जरूर मजा आया होगा और आपने बहुत इंजॉय जरूर किया होगा, है ना। तो बस कुछ और बातें होंगी, कुछ और किस्से होंगे, कुछ हमारे और आपके जज्बात होंगे कल फिर से इट हैपेंस में। लेकिन अब इजाजत लेने का वक्त आ गया है भाई, तो रुखसती नहीं कहूंगी इसे क्योंकि कल तो मिल रहे हैं ना। हाँ तो बस एक छोटा सा पॉज है, कल मिलने का वादा है। तो बस अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत कीजिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन

जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वनसन ओवाने हम ते जी आर जे संदेश और दिनाल तुसी बने होए। देखो हिंदी फिल्मा या कोई भी फिल्म कह लो, पंजाबी कह लो, हिंदी कह लो या इंग्लिश कह लो, कोई भी फिल्म कह लो, हर फिल्म किसे ना किसे ते आधारित हुंदी है। कोई नॉवल तो बनाई जांदी है, किसे कोई किसे तो इंस्पायर हुंदी है, कोई किसे दी बायोपिक हुंदी है, पर जिहड़ियां नॉवल्स तो फिल्म बनाई जाती है ना, उन्होंने इंटरेस्ट थोड़ा जा डिफरेंट तरह का हुंदा है। स्पेशली लोगों के लिए जिहड़े नॉवल लवर हुंदे हैं, जिन्होंने नॉवल्स बहुत पसंद हुंदे हैं, तो अज भी बहुत सारे दर्शकों के बसिया हुई ने फिल्म नॉवल्स से आधारित है। हुण दी फिल्मों की गल नहीं करूंगी, मैं पुरानी दी करूंगी, क्योंकि पुरानी फिल्मों की तो गल ही कुछ होर हुंदी सी, जिहदे विच प्यार हुंदा सी, समाज इतिहास इंसानी भावनावां बहुत गहराई दे नाल ते खूबसूरती दे नाल पेश कीतियां जांदियां सी। एक एक करके दस दी उन्हां बारे, पर पहलां तुसीं इह गीत सुणो।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.

वेलकम बैक एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101.01 जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जेड़ी फिल्म है की है जी उसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। देखो ए फिल्म है जेड़ी ए आई सी 1977 दे विच सत्यजीत रे दी फिल्म है की है ते उपन्यास के सम्राट मुंशी प्रेमचंद दे प्रसिद्ध नावल सीगा जेड़ा शतरंज के खिलाड़ी उसे ते आधारित है की है। फिल्म दा नाम भी फिर उही रखा गया सी शतरंज के खिलाड़ी। ए 1856 विच लखनऊ विच वाजिद अली शाह दे शासनकाल दी कहानी है जिथे दो जागीरदार जिमीदार यानी कि शतरंज विच डुबे रहिंदे ने ते अंग्रेजां दे कब्जे तो बेखबर हुंदे ने। फिल्म विच एक्टर संजीव कुमार ते सईद जाफरी लीड रोल दे विच हैगे ने ते बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं। मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वनसानोवाने अमते जी आरजे संदेश अलग दिनाल तुसे बने होए हुणी जी फिल्म आई सी ना पति पत्नी और वो थोड़े साल पहला कार्तिक आर्यन की भूमि पेड़ निकलते अनन्या पांडे की एक पति पत्नी जी ओजी पति पत्नी सी उसकी गल कर लें 1978 आई सी बासु चैटर्जी की कॉमेडी ड्रामा जो कमलेश्वर दे नॉवल पति पत्नी और वो ते आधारित हैगी। फिल्म विच संजीव कुमार सी विद्या सिन्हा सी ते रंजीता लीड रोल दे विच सी। ए एक काल्पनिक जी मतलब दर्शाई गई प्रेम कहानी है जो कॉमेडी ते इमोशन दे नाल भरी हुई है ते समाजिक रिश्तियां ते व्यंग भी कसदी हैगी है। बहुत सोहनी है, देखना चाहोगे तो थानू यूट्यूब ते मिल जानी है।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट रेडलैंड्स के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पे हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से माउंट थॉम्सन मेमोरियल गार्डन्स एंड क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलैंड पार्क में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxlade, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. ब्रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहला सवाल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? जी हाँ, वेडनेसडे यानी कि मिड वीक, और काम अच्छे से चल रहा है? जी हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हफ्ते के पहले दिन अगर आप जम के काम कर लेते हो ना कहीं आप अपने सक्सेस की पहली सीढ़ी उधर से ही चढ़ लेते हो। सो हमेशा याद रखिए, अपने काम से मोहब्बत कीजिए और जिस काम से मोहब्बत है वही काम कीजिए। जी हाँ, इसी के साथ अब जरा चलते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है? वेल, एक हेल्दी रिचुअल के साथ होती है। एक ऐसा रिचुअल जो कि हमें हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, और हमें इस दुनिया, ये जो जगत की जद्दोजहद है, इससे मतलब ऑफ कोर्स कोप अप करने में हेल्प करता है। और ना सिर्फ कोप अप करने में बल्कि सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव। हमें कोई टेंशन नहीं होती, अगर कोई स्ट्रेस है तो ये करने से वो भी किसी ना किसी तरह से कम हो जाता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट What are you waiting for? जल्दी से आ जाइए, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा अच्छा फील करते करते अब जरा शुरुआत करते हैं खूबसूरत गाने के साथ जिसका नाम है छेड़खानियां। जी हाँ, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि दोस्तों अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी तो बातें शुरू हुई हैं और अभी बहुत बहुत कुछ होगा। सो आइए करते हैं और फिर करते हैं बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और आपने देख लिया, आई मीन आपने सुन लिया कि कैसी शुरुआत है। एकदम मस्त कुड़ी नू नचने दे भाई, बात तो सही है। अगर किसी का डांस करने का मन है तो उसे नाचने देना चाहिए, उसे डांस करने देना चाहिए। क्योंकि जो लोग बिना स्टेप बिना कोरियोग्राफी फॉलो किए डांस करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा लाजवाब है। उनका डांस उनकी मस्ती सबसे जबरदस्त और लाजवाब है। सो इसी के साथ बिना देर किए अब शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। जी हाँ, आपको तो पता ही है मौसम कितना इम्पोर्टेंट है भाई। मैं तो कहती हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मौसम ही है, क्योंकि अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं, और अगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो हमें ऐसा लगता है ओ हमारे सारे के सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। आई मीन पानी भी फिर जाता है बिकॉज ऑफ द मौसम। सो आइए जरा जानते हैं क्या कह रहा है मौसम। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, और अगर बात की जाए अभी की टेम्परेचर की तो 21 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील ऑन द अदर हैंड आपको हो रहा है 20.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। दोस्तों ये तो हुई दिन की बात, अब रात की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस यानी कि 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे मौसम में। 30% चांसेस ऑफ रेन जो कि 1 mm तक हो सकती है, और अगेन बीच बीच में मुझे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी नजर आ रही है। 5 बजे के करीब भी मुझे 6% बारिश होती हुई नजर आ रही है, बट उसके अलावा मुझे मौसम ठीक नजर आ रहा है। और उसमें भी सिचुएशन ये है कि ये कहीं पर होगी बूंदाबांदी और बाकी जगहों पर होगी भी नहीं। जी हाँ, सो ये है मौसम का हाल आज का। लेकिन क्वालिटी एकदम एक्सीलेंट है। जी हाँ, ना सिर्फ फेयर है बल्कि एक्सीलेंट है। दोस्तों ये हुई आज की बात मौसम के बारे में। आज की बात अब कल करते हैं, यानी कि कल मौसम कैसा रहने वाला है, यानी कि थर्सडे को। तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, बट द बारिश की सिचुएशन इज 60% चांसेस बारिश होने के, जो कि पिछले कल से भी बढ़ गए हैं। मतलब पिछले कल मुझे नजर आ रहा था कि 50% बारिश हो सकती है थर्सडे को, लेकिन अब दिख रहा है 60%। अब ये और ना बढ़ जाए। जी हाँ, तो ये 60% चांसेस जो है वो बारिश के हैं। और फ्राइडे को 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 30% चांसेस हैं बारिश के। सो रेडी रहिए। लेकिन सैटरडे को मुझे खिलखिलाता हुआ सूरज नजर आ रहा है, तो धूप आपको जम के मिलेगी। पहले से ही अपनी सारी की सारी वो जो पिकनिक वाली सिचुएशन है, सामान जो है वो रेडी करके रखिएगा। अपने लॉन में बैठिए, किसी प्यारे से जाके पार्क में बैठिएगा, धूप सेकिएगा और सिट्रसी फ्रूट्स को खाइएगा, क्योंकि सर्दी में सिट्रसी फ्रूट धूप में खाना उतना ही लाजमी है जितना कि सरसों का साग मक्की दी रोटी। आपको पता चल गया है मैंने क्या बोला है, वही आपको फॉलो करना है, और उसके अलावा भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि मेरे ही बात फॉलो करनी है, बट द थिंग इज कि आपको मजे करने हैं। और सैटरडे को अच्छा मुझे सूरज खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है, एंड द थिंग इज कि वीकेंड भी होगा, छुट्टी भी होगी, तो उससे पहले के लिए आपको थोड़ा रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मुझे बारिश दिख रही है खासकर कल। बाकी सब बढ़िया है यहाँ पर। अब जरा चलते हैं सीधा एक बहुत ही खूबसूरत गाने की तरफ, जिसका नाम है वो पहली बार। जी हाँ।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और आपको बता दिया गया है मौसम के बारे में, सिर्फ आज के नहीं बल्कि अगले 2 दिन के, और साथ में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी। सो अब जरा चलते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू की तरफ। जी हाँ, एक ऐसी बात, एक ऐसा पार्ट जो हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देता है, और वो है आपके फरमाइशी गीत। जी हाँ, वही गीत जो आप चुन चुन कर लाते हो और हमें भी सुनाते हो। मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमने गाने सुने भी नहीं होते और हम पहली बार सुन के ही उनके दीवाने बन जाते हैं। ऑल थैंक्स टू माई लिसनर्स चॉइस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप कोई गाना फरमाइश करना चाहते हैं तो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, आपको बहुत ज्यादा अजीज है, तो जल्दी से ले आइए। आपको एक नंबर डायल करना है और उस नंबर पे आप कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके हम तक वो पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करके उन्हें स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। आई नो दैट साउंड सो अट्रैक्टिव, राइट? सो व्हाट यू गोना डू इज आपको फोन उठाना है और नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888-71701। आई रिपीट, +9182888-71701। तो बस फिर यही करना है आपको, जल्दी से फोन उठा के नंबर डायल करके हमें अपनी फरमाइश भेज देनी है। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कपूर खानदान की शादी की। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि कपूर खानदान में शादी हो रही है। अरे द लास्ट शादी जो हमने देखी थी वो तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की थी, राइट? वेल वेल वेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वाली शादी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अनिल कपूर बोनी कपूर के खानदान की शादी। एंड दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले मुझे पता चलता है कि रणबीर कपूर की फैमिली एंड सोनम कपूर की फैमिली काइंड ऑफ रिलेटेड है। मतलब राज कपूर के पिताजी यानी कि पृथ्वीराज कपूर और सुरेंद्र कपूर एक दूसरे के कजन्स थे, भाई थे। इमेजिन, मतलब दे आर रिलेटेड। सो बेसिकली देखा जाए तो पूरा का पूरा कपूर खानदान एक दूसरे से को रिलेटेड है। मुझे लगता था सिर्फ नाम और सरनेम जो है वो सेम है, बाकी कोई लेना देना नहीं है, बट टर्न्स आउट है। सो अगेन, कपूर खानदान में बोनी कपूर की बेटी, बड़ी बेटी अंशुला कपूर की शादी हुई है और उन्होंने एक बहुत ही फेमस राइटर से शादी की है। बहुत ही प्यारी शादी रही, शादी घर में हुई लेकिन रिसेप्शन जो है वो बहुत ही बड़ा फैन अफेयर रहा। शादी में बहुत सारे लोग नहीं आए थे, सिर्फ घर के लोग थे और मेक श्योर किया गया कि अंशुला कपूर बहुत ही खूबसूरत लगे। लाइक आई हैव टू से, जब भी कोई सेलिब्रिटी वेडिंग होती है ना तो हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर आपने अंशुला कपूर की शादी की पिक्चर्स नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि कपूर खानदान पूरा उसमें शामिल हुआ था। सोनम कपूर से लेके शनाया कपूर से लेके रेया कपूर से लेके अर्जुन कपूर, सब के सब वहां थे। जानवी कपूर, खुशी कपूर, दे ऑल वर लुकिंग सो सो सो गुड। सो वेडिंग कॉन सीजन जो है वो आ जाएगा अभी 2-3 महीनों में, और बहुत सारे लोगों की शादियां होंगी, बहुत सारे लोगों के कजन्स की, भाई बहनों की शादियां होंगी, किसी के चाचा ताया की भी शादी होगी। सो ऐसे में आपको कपड़ों के लिए तो इंस्पिरेशन चाहिए होती है, राइट? सो मैं कहती हूँ, अगर आपने नहीं चेकआउट किए हैं अंशुला कपूर की वेडिंग पिक्चर्स तो जरूर चेकआउट कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द लवली कपल हमारी तरफ से, हम यही कहेंगे प्यार साथ और ये खूबसूरत सी जिंदगी में ये बहार आपकी ऐसे ही बनी रहे, और यही हमारी दुआ है यहाँ पर। अब मैं जो प्ले करने वाली हूँ वो है एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, ये गजल है, और ये गजल जो है वो मेरी तरफ से नहीं है बल्कि एक फरमाइशी गजल है। ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी की तरफ से, बिना देर किए हुए इसे प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गाने और पीसेस लेकर आने के लिए, म्यूजिकल पीसेस, क्योंकि बहुत बार हमने ये गाने सुने भी नहीं होते, गजलें हमने नहीं सुनी होती, तो थैंक यू सो मच हमें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उनके साथ। और बिना देर किए हम प्ले करेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये गाना, और दूसरे शब्दों में कहा जाए गजल, तुम्हें देखूं बस तुझे देखते देखते शाम। क्या बात है, क्या बात है, सुनते हैं इसको और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का. अच्छा, वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. दोस्तों, ओशो वन सेड, इफ मैन ट्रूली लव्ड वुमेन देन दिस वर्ल्ड वुड नॉट हैव बीन सो ओवर पॉपुलेटेड. या दैट्स व्हाट ओशो सेड. जी हाँ, ऑफकोर्स हम इसके आगे भी जाएंगे, थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में भी. और ये बात ना वायरल हो रही है, ये वीडियो वायरल हो रही है जहां पर ओशो इस बारे में बात कर रहे हैं. उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सच में अगर मर्द औरत को प्यार करता होता, सच में उसको प्यार करता होता, उसके लिए प्यार करता होता, तो ये जो वर्ल्ड है ये इतना ओवर पॉपुलेटेड नहीं होता. Now, let's talk about the scientific fact. जी हाँ, तो study suggest करती है कि unmedicated childbirth can feel like breaking 20 bones at once. जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार फिर से सुन लीजिए. Study suggest unmedicated childbirth can feel like breaking 20 bones at once. And now I know why Osho said that. जी हाँ, and जब मैंने इसे सबसे पहली बार सुना, आई वॉज लाइक ओके, आई मीन इट मेक्स सेंस, बट मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा. बट ये वीडियो बार बार मेरे सामने आई, किसी ने और ने इसे शेयर किया, किसी और ने इस पर अपना पर्सपेक्टिव रखा, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की और सब इससे कहीं ना कहीं अग्री कर रहे थे. जी हाँ, कि अगर मर्द औरत को, यानी कि मैन जो वुमन है उसको रियल में प्यार करता, उसके लिए प्यार करता, तो ये वर्ल्ड इतना ओवर पॉपुलेटेड नहीं होता, बिकॉज चाइल्ड बर्थ इज नॉट इजी. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी सजेस्ट करती है कि अनमेडिकेटेड जो चाइल्ड बर्थ है वो वैसा फील हो सकता है जैसा कि 20 हड्डियां किसी के शरीर में एक साथ टूटेंगी. एंड गेस व्हाट, मेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ तो अभी कुछ सालों से हमें मिले हैं, इससे पहले अनमेडिकेटेड ही होते थे. जी हाँ, नाउ आई नो कि मुमताज क्यों चली गई. शाहजहां प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन क्या शाहजहां मुमताज को सच में प्यार करते थे? बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट द स्टोरी व्हाई शी डाइड, देन यू शुड रीड अबाउट इट. जी हाँ, इसी के साथ यहां पर मुझे लगता है कि हमें सोचने की जरूरत है इसके बारे में. एंड इसी के साथ आप इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर मुझे बताइएगा. एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मैंने वहां पर कुछ पढ़ा और कुछ देखा, कुछ पढ़ा, एक मीम देखा बेसिकली मैंने, और उसमें जो लिखा हुआ था वो मुझे ऐसा लगा सेंस तो बहुत ज्यादा बना रहा है. एंड दिस इज फॉर ऑल द लिसनर्स, टू ऑल द पीपल जो हमेशा कहते हैं कि हमको हेल्दी खाना चाहिए. जब भी उनको कोई भी बाहर का खाना या फास्ट फूड या जंक फूड खाता हुआ नजर आता है, वो हमेशा हमेशा उनको एक ही सलाह देते हैं कि यू नो व्हाट, यू शुड ईट हेल्दी, दैट विल मेक योर बॉडी लुक गुड एंड दैट विल मेक यू फील गुड. या उनके लिए ही है. सो ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग प्रीच करते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, कि ट्राई टू ईट हेल्दी टूडे बट द ऑरेंज स्प्रेड इन जूस इन माई आई, फ्राइज वुड नेवर डू दैट टू मी. Oh, and I was like, I was sold. Yeah. So to all the people जो कि हमेशा यही कहते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, नहीं हेल्दी खाना चाहिए, भाई सही बात है, खाने की तो कोशिश की, एक संतरा एक ऑरेंज खाने की कोशिश की, उसका जो जूस है वो एकदम से मेरी आंखों में जाके गिर गया, जो उसके छिलके से निकला, और उसने मेरी आंखों को इतनी देर तक परेशान करके रखा. मतलब उसने, जो कि हेल्दी कहा जाता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया. क्या फ्राइज वो मेरे साथ करेंगे? क्या फ्राइज मेरी आंखों को उतना टॉर्चर करेंगे कभी? सो आप खुद सोचिए कि हेल्दी खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. जी हाँ, I would say कि हमें हेल्दी ही खाना खाना चाहिए, बट ये टेक ऑन भी गलत नहीं है, राइट? मतलब आप संतरा खा रहे हो, संतरे का जूस आंखों में चला जाता है, कितनी देर तक परेशान करता है, मतलब फॉर अ चेंज हेल्दी खाने की कोशिश की, उसने अलग ही महाभारत हमारी आंखों में छेड़ दी, और फिर उसके बाद लोग हमें कहते हैं कि हेल्दी क्यों नहीं खाते, खाने की तो कोशिश की, हेल्दी से अनहेल्दी बना दिया उसने हमें 2 मिनट में. सो फ्राइज तो ऐसा नहीं करते, फ्राइज तो हमें मजा देते हैं, अच्छा फील कराते हैं, और हमारी आंखों को भी परेशान नहीं कर सकते. सो ऑरेंज और फ्राइज, व्हाट वुड यू चूज? आप मुझे बताइएगा, लेकिन हमें हेल्दी ही खाना चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर द फन पार्ट. या हेल्दी ही खाना चाहिए. आप लोग बोलोगे निविया शर्मा, खुद भी तुम वही प्रीच कर रही हो और यहाँ कह रही हो कि जो प्रीच करते हैं हेल्दी खाने को उनके लिए. चलिए ठीक है, मेरे लिए भी, उनके साथ साथ मेरे लिए भी है ये. चलिए ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

gone.

0: बैग से करेंगे सबका स्वागत।
1: सरसों की माला पे सिमरू मैं।
2: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
4: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
6: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448-381-360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
8: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
9: भरतमान कोल दो ही चीजा हुंदियां ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एंड एज सरपंच।
10: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
9: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरपाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
11: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों मुझे इतना पता चल गया है कि हम ह्यूमंस ज्यादा कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है कुछ और क्रीचर्स इस दुनिया में। जी हाँ, और अगर हम बात करें कैट्स की तो मुझे लगता है कि कैट्स इंटेलिजेंस के मामले में ह्यूमन से ऊपर आएंगी। मतलब दे आर सो कनिंग, दे आर सो शार्प, और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही चंट चलाक होती हैं। व्हाट डू यू थिंक? अगर आप कैट ओनर हो तो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन मैं ये क्यों कह रही हूँ, वेल एक कार में एक बिल्ली को, वो पेट है, उसके जो ओनर है वो उसको कार में छोड़कर चले जाते हैं, और वो जो है कैट बहुत देर से उनका इंतजार कर रही थी, फिर उसने देखा कि ओनर तो आ नहीं रहे हैं। तो शी इज नॉट लाइक डॉग्स। जी हाँ, जैसे डॉग्स होते हैं ना बेचारे, कार में अगर बैठे हैं तो वो बैठे ही रह जाएंगे, उनका ओनर उन्हें छोड़ के गया है तो वो वैसे ही रहेंगे बेचारे, कुछ नहीं कर सकते, वो भोंकते भी नहीं, कुछ नहीं करते, बिकॉज डॉग्स आर सो, मतलब क्यों है वो इतने शरीफ इस मामले में, आई डोंट नो, because I am a dog person, but yeah, if you are a cat person, आप मुझे बताइएगा कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ क्या वो सच है। So, वो cat जो है वो गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। जी हाँ, वो honk करना शुरू कर देती है जोर जोर से कि बरखुरदार तुम मुझे भूल गए हो यहाँ पे, तो जल्दी से आओ, इस गाड़ी का दरवाजा खोलो और मुझे बाहर निकलने दो। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम अपना मटर गस्ती करने निकल गए और मुझे यहाँ पर छोड़ गए, और अगर भूल गए हो फिर तो मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ। जी हाँ, मतलब कैट नोज कि कैसे हॉर्न को honk करना है, मतलब कैसे हॉर्न बजाना है। वो बड़ी अच्छे से देख रही है कि ओके अच्छा मुझे भूल गए, ठीक है मैं बताती हूँ इनको। जल्दी से वो कार के जो है वो हॉर्न जो उसने बजाना शुरू कर दिया। वहां पे आते जाते लोग उसे देख रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं कि कितनी इंटेलिजेंट कैट है। वेल ऑफ कोर्स कैट्स आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि कैट्स किसी टाइम पे ह्यूमंस को रूल करती थी। जी हाँ, आपको नहीं पता क्या इस बात में? सो एक मिथ है, बट ऐसा कहा जाता है कि इसमें रियलिटी भी है, और इनफैक्ट इजिप्ट में तो कैट डॉग्स भी होती थी, कैट गॉड्स भी होती थी, डॉग्स नहीं गॉड्स होती थी। सो या यू कैन इमेजिन कि ह्यूमंस को रूल करने का जो इरादा है वो अभी नहीं आता। आपने कभी देखा है या किसी को सुना जिनके पास बिल्लियां होती हैं, वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे से सोए होते हैं, रात को 3 बजे उठते हैं और हम देखते हैं कि हमारी बिल्ली हमें देख रही होती है, कभी कभी हम खुद ही डर जाते हैं। सो या बिल्लियां यानी कि कैट्स कैन बी रियली मिस्टीरियस, बट द थिंग कि अगर आप उनको छोड़ जाओगे गाड़ी में तो आप ये तो सोच सकते हो कि वो आपको हॉर्न बजा के बुला लेंगी, जस्ट लाइक एनी ह्यूमन वुड डू। अगर डॉग होता इसकी जगह पे तो वो बेचारा कभी भी नहीं कर पाता, ये वो बेचारे ही हैं, सच में बेचारे हैं डॉग्स। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, यानी कि खबरों और पॉलिटिकल वर्ल्ड और वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, दुनिया के देश क्या कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत से। जी हाँ, जहां पर राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो बहुत तूल पकड़े हुए है। जी हाँ, सो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस अयोध्या जेल पहुंची है। अयोध्या पुलिस ने जेल में बंद 3 अभियुक्तों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी और इस पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई थी। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि मामले की जांच आगे बढ़ने के लिए तीनों से पुलिस हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है। इससे पहले रविवार को पुलिस टीम ने जेल के भीतर इस मामले के 5 आरोपियों से पूछताछ की थी। पुलिस का कहना है कि उस पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर अदालत से तीनों अभियुक्तों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। अब इसमें आगे क्या होगा, वेल वो तो देखना होगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 04159526600 04159526600।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ फिर से शुरू हो गया है ईरान और अमेरिका का कारनामा। जी हाँ, क्या है मामला ये जरा आपको बताते हैं। सो अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले के जवाब में ईरान पर कई जोरदार हवाई हमले किए हैं। हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। US सेटकॉम ने मंगलवार को कहा कि यह अभियान अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में बेकसूर चालक दल वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ शुरू किया गया है। दूसरी ओर ईरान के उप विदेश मंत्री ने इन हमलों को पिछले महीने हुए अमेरिका ईरान अंतरिम समझौते के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान इसके खिलाफ निर्णायक कदम उठाएगा। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार हमले केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक में हुए। अमेरिका पहले ही कह चुका था कि अगर टैंकरों पर हुए हमले हुए तो ईरान को नतीजा भुगतना होगा। मंगलवार रात जारी बयान में यूएस सेटकॉम ने कहा कि ये हमले ईरान के हमलों के जवाब में किए गए हैं। और इसमें एक नई बात भी सामने आई है, एक नई खबर। जी हाँ, सो अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान के खिलाफ सिलसिलेवार हमलों में 80 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में सेटकॉम ने कहा कि ये कार्रवाई हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में की गई थी। सेटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम कमान और कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार ठिकानों, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 60 से अधिक छोटे IRGC जहाजों को निशाना बनाया। अपने बयान में सेटकॉम ने कहा कि इन अभियानों का मकसद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान की ओर से लगातार हमले करने की क्षमता को कमजोर करना है। सेटकॉम के मुताबिक ईरान ने हाल ही में हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला किया, जिनमें मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाला MT अल रकायत, सऊदी अरब के झंडे वाला MT विद्वान और लाइबेरिया के झंडे वाला MT साइप्रस प्रॉस्पेरिटी शामिल है। और इन सबको निशाना बनाया गया। उसके बाद अमेरिका ने जवाबी हमला किया है, ये कहना है अमेरिकी सेटकॉम कमान का।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और एक जहाज लापता हो गया है। जी हाँ, जहाज शारजाह से कराची जा रहा पाकिस्तान का कार्गो विमान लापता हो गया है और उसकी तलाश जारी है। जी हाँ, एक विमान ही लापता हो गया, किसी इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। शारजाह से कराची जा रहे पाकिस्तान के दो एयरवेज का एक कार्गो विमान बोइंग 737 अचानक लापता हो गया है। बीबीसी उर्दू सर्विस के मुताबिक विमान में चालक दल के 5 सदस्य सवार थे। बीबीसी की उर्दू सर्विस के ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से खबर दी है कि मंगलवार को पाकिस्तान के समय अनुसार रात 9:18 पे विमान के नेविगेशन सिस्टम में खराबी की सूचना मिली। इसके बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर ने तुरंत विमान को गाइड करना शुरू किया, लेकिन रात 9:21 तक रडार पर विमान तेजी से नीचे उतरता दिखाई दिया और उसकी दिशा अचानक बदल गई। इसके कुछ ही देर बाद कराची से लगभग 155 नॉटिकल माइल पश्चिम में विमान से रडार और रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। लापता विमान की तलाश के लिए पाकिस्तानी नेवी, एयरफोर्स और दूसरी एजेंसियां शामिल हो गई हैं। पाकिस्तानी नौसेना का जहाज पीएनएस जुल्फीकार को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। पाकिस्तानी नौसेना का एक ATR विमान तुर्बत से उड़ान भर चुका है, जबकि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का कमर्शियल जहाज लाहौर भी खोज और बचाव अभियान में उतर चुका है। पाकिस्तान में विमान दुर्घटना की पिछली बड़ी घटना 2020 में हुई थी। उस समय पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक घरेलू यात्री विमान कराची हवाई अड्डे पर उतरने से ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार 99 लोगों में से केवल 2 ही जीवित बच पाए थे।

जी दोस्तों, और इसी के साथ नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप। जी हाँ, एक ऐसा मैच जिसने बहुत बहुत सारी विवादों को जन्म दे दिया है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इजिप्ट एंड अर्जेंटीना का मैच। जी हाँ, अर्जेंटीना और इजिप्ट का मैच पिछले कल हुआ, और आपको मैं बता दूं कि इस मैच के बाद विवादों का जन्म क्यों हुआ है। वेल, अर्जेंटीना ने बहुत टाइम तक कुछ स्कोर नहीं किया था, और इजिप्ट के दो गोल्स जो हैं वो हो चुके थे, लेकिन आखिरी के 10 मिनट में कुछ ऐसा होता है कि अर्जेंटीना 3 गोल स्कोर करता है। नाउ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी और सबने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, वो एक ऐसे इमोशन से गुजर रहे थे, मतलब मेसी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो हारने वाले ये मैच, बिकॉज इजिप्ट प्लेड इट सो वेरी गुड। जी हाँ, मतलब इतने अच्छे से इजिप्ट खेल रहा था कि अर्जेंटीना ऑलमोस्ट हारते हुए बचा है, लेकिन फिर उसके बाद अर्जेंटीना जीत जाता है। जो अर्जेंटीना के फैन है वो ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से खेला एंड में, इसलिए वो जीत गए, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर उनके साथ पार्शियलिटी हुई, मतलब ये मैच जो है वो पार्शियल था टुवर्ड्स अर्जेंटीना, ये मैच जी हाँ पार्शियल था टू होल अनदर लेवल। ये उनके रेफरी का कहना है, ये उनके कोच का कहना है, जी हाँ ये उनके सभी लोगों का कहना है। इनफैक्ट उनके एक प्लेयर ने तो इतना तक कह दिया कि ये इनजस्टिस है, मतलब इसे हम जस्टिस नहीं कहेंगे ये जो हुआ है, और उनके रेफरी ने तो ये कह दिया कि ठीक है, मतलब मेसी को जिताना चाहते थे, अगर वो अर्जेंटीना को ही जिताना चाहते थे तो हम सबको बुला के खिलाया ही क्यों, मतलब अर्जेंटीना को वो वैसे ही वर्ल्ड चैंपियन रहने दें। जी हाँ, हम सबको बुला के ये शो किया कि हम लोग वर्ल्ड चैंपियन के लिए फिर से रेस में जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन टर्न्स आउट वर्ल्ड चैंपियन जो ऑलरेडी है उसी ही को बनाने का इनका इरादा है, इजिप्ट के साथ गड़बड़ हुई है, ये कहना है उनके कोच का। सो उन्होंने क्या क्या कहा है, आई विल टेल यू इन डिटेल। सो उन्होंने कहा, आई विल से व्हाट्स ऑन माय माइंड रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, दिस वाज क्लियरली अ रिजिड मैच एंड द होल वर्ल्ड सॉ इट, एंड आई हैव टू से कि कहीं ना कहीं ये सही बोल रहे हैं। अगर आपने वो मैच देखा होगा तो आपको शायद ये लगा होगा कि अर्जेंटीना ने बहुत अच्छा खेला टुवर्ड्स द एंड, लेकिन आप वो चीज शायद ना

competition, perhaps they wanted Messi to stay in the running. In football, there are sometimes external factors that go beyond the technical aspect. The world champion received support at every level. Yeah. उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि ये मैच उनके साथ नाइंसाफी था. जी हाँ, आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने इस मैच को देखा है? क्या आपको भी ये लग रहा है? जी हाँ, तो इजिप्ट अब बाहर हो चुका है और अर्जेंटीना पहुंच चुका है. और आपको तो पता ही है अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं. नॉर्वे खेल रहा है, फ्रांस खेल रहा है, साथ में खेल रहा है कौन? ऑफकोर्स अर्जेंटीना, साथ में बेल्जियम. ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो आपको क्वार्टर फाइनल्स में खेलते हुए नजर आने वाली है. और इतना कहूंगी कि या I would say कि थोड़ा rigid तो ये मैच था. जी हाँ, even if I am a fan of Messi, but कुछ तो झोलबाजी उस मैच में हुई है. What do you think about it? ज़रूर मुझे बताइएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani. Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers.
3: And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan. And
5: you are listening to Radio Briswani.
6: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
12: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
12: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omzorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
13: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.
14: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ. जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पे, जी हाँ फॉरेस्ट बीच ऑस्ट्रेलिया पे, एक डेब्रे मिला है रॉकेट का। जी हाँ, आपने सही सुना। सो फॉरेन रॉकेट का डेब्रे जो है वो मिला है फॉरेस्ट बीच, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, उस पर। और अब तफ्तीश जो है वो जारी है कि वो कैसे डेब्रे जो है वो वहां पर पहुंचा और क्या इसका लेना देना है कौन सी जगह से, कौन सी कंट्री से। वेल, ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ यहां पर लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मिस्टर ट्रंप। जी हाँ, सो ट्रंप जो है वो अलग ही लीग में है। जी हाँ, मतलब पूरी दुनिया में धमाल मचाने के बाद आज खुशी मना रहे थे, क्यों? वेल, टोयोटा इज मूविंग फ्रॉम मेक्सिको टू द यूनाइटेड स्टेट्स टेक्सस, अ रियली बिग डील, टैरिफ्स एट वर्क, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। या दैट्स व्हाट ही ट्वीटेड ऑन ट्रूथ सोशल। जी हाँ, ट्रूथ सोशल पर उन्होंने ये लिखा है कि टोयोटा जो है वो मेक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में आ रही है, अब यूनाइटेड स्टेट्स में टोयोटा बना करेगी, और ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मैंने टैरिफ्स लगाए थे इसीलिए ये सारा भलाई का काम हो रहा है। अब हम सब मिलके महंगी टोयोटा बनाएंगे, क्योंकि सस्ती टोयोटा तो सब खरीद रहे थे, महंगी टोयोटा बनाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, और फिर देखते हैं कि कैसे खरीदता है कोई, क्योंकि हम टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ का यही होगा। जी हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि जब टोयोटा फिर से यूनाइटेड स्टेट्स से भागने वाला है, कहाँ जाएगा, लेट्स सी। जी हाँ, इसी के साथ मिस्टर ट्रंप सच में बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने निकी मिनाज को हॉट कह दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, निकी मिनाज को हॉट कहते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। और सिर्फ हॉट नहीं, आई मस्ट से सो हॉट। जी हाँ, सो हॉट उन्होंने कहा। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है रापर निकी मिनाज को एज सो हॉट ड्यूरिंग अ रोज गार्डन लंचन एट द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन डीसी। जी हाँ, और उन्होंने बड़ी अच्छे से कहा कि वी ऑल्सो हैव अ वुमन दैट is so respected and so hot and so great and so such a great friend of me. जी हाँ, yeah, that's what he said. अब आप लोग बोलोगे कि निकी मिनाज की तारीफ वो क्यों कर रहे थे? Well, फिर आपने निकी मिनाज की statements नहीं सुनी है, क्योंकि वो आए दिन White House में आके कुछ ना कुछ speech जो है वो देती रहती हैं। वो आए दिन ये कहती रहती है कि Donald Trump is greatest president we can have in United States of America. आप लोग बोलोगे कि अच्छा, मतलब सरके हुए दिमागों के लोगों की जो है वो कमी नहीं है। या निकी मिनाज being one of those rappers, but इसी के साथ बहुत ज्यादा जो है backlash भी उन्हें मिली है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या कह रही हो निकी मिनाज, तुम रैप अच्छा करती थी इसीलिए हम तुम्हें सुनते थे, लेकिन ये ऐसी बातें करोगी तो हम तुम्हें नहीं सुनेंगे। दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। बट डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में सारी चीजें गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो करते क्या है? बल यही तो करते हैं, वो लड़कियों की तारीफ आए दिन इधर उधर आगे पीछे यहाँ। और इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे वो गोल्फ कोस्ट में जो है वो घूम रहे हैं, और वहाँ पे एक लड़की उनको देख के इशारा करती है, ये एंड ही इज लाइक, यू नो व्हाट, शी इज इन अ गुड शेप। फटाफट अपनी गाड़ी से उतरते हैं और कहते हैं कि ओ यू वॉन्ट टेक पिक्चर, फटाफट निकल के पिक्चर देने के लिए बंदा पहुंच जाता है। मतलब इस यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता, जब ये सब काम कर रहे हैं तो आप सेलिब्रिटी बनो ना, आप एक्टर बनो ना, सेलिब्रिटी बनो, आप रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करो। आपने पूरे अमेरिका की सत्ता को रियलिटी शो बना दिया और बाकी पूरी कंट्रीज को बिग बॉस का कंटेस्टेंट बना दिया। ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

इसी के साथ अ डेली विजडम नोट फॉर यू, जी हाँ, एंड अ क्वोट फॉर यू. वेल, आपने सुना होगा हमेशा बोलते हुए लोगों को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर किसी ने ये तो नहीं कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट. आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? सोचिए सोचिए. सोचिए. चलिए ठीक है, मैं ही बता देती हूँ. क्योंकि विमेन जो है वो ऑलरेडी परफेक्ट है, वो पैदा ही परफेक्ट हुई है, और जितनी भी गड़बड़ है वो सारी मर्द जात में है. सो इसीलिए उन्हें कहते हैं कि प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बन जाओ. इसीलिए कहा जाता है कि परफेक्ट यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नॉट विमेन, बिकॉज विमेन आर बॉर्न परफेक्ट लिटरली. एंड टू ऑल द लेडीज, या टू ऑल माई फीमेल लिसनर्स, या कूडोस टू यू बिकॉज यू आर अमेजिंग. एंड जितने भी मर्द लोग हैं, जितने भी मेल लोग हैं, आई मीन इट्स नॉट मी, ये तो बनाई गई है कहावत जिसके द्वारा उन्होंने ही डिफरेंशिएट कर दिया है. मैं क्या कहूं, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रही हूं. सो मुझे मत बोलिएगा. यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, और उससे हमारा यही मतलब है कि अब हम पूरी तरह से पुराने गाने प्ले करने वाले हैं। मतलब कोई भी नया गाना नहीं होगा, सिर्फ पुराने गाने उन वादियों से निकल कर जो कि बहुत ही खूबसूरत, प्योर और मंत्रमुग्ध करने वाली होती थी। लिरिक्स की बात करें तो क्या कमाल, गायकी की बात करें मिसाल, और साथ में बात करें म्यूजिक की तो लाजवाब। या उसी एरा की बात हो रही है जिसने लेजेंडरी सॉन्ग्स हमें दिए हैं, जिनका मतलब बनता है, जी हाँ, जो मीनिंगफुल गाने हम आज भी गाते हैं, सुनते हैं और उनके साथ अपना दिल लगाते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, जल्दी से आ जाइए आपकी फरमाइशों के साथ। जो है इस सेगमेंट में और भी चार चांद लग जाते हैं, और फरमाइश के साथ ही इस सेगमेंट की शुरुआत हो रही है। और ये फरमाइश हमें पिछले कल ही भेज दी गई थी और कहा गया था कि आज ये प्ले की जाए, तो गाना है पुराना। मैंने सोचा कि डेफिनेटली ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट की शुरुआत हम इसी से करेंगे। ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास प्यारी लिसनर अमला प्रेमा आंटी जी की तरफ से। जी हाँ, प्रेमा आंटी जी की तरफ से ये गाना जो है वो आया है, फरमाइश आई है, और बहुत ही खूबसूरत है गाना। गाने का नाम है छुप गया कोई रे। जी हाँ, थैंक यू सो मच प्रेमा आंटी, हमें की तरह खूबसूरत खूबसूरत गाने जो है वो फरमाइश करने के लिए, भेजने के लिए, रेकमेंड करने के लिए। ऐसे ही प्यार देती रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। और ये है चंपक कली मूवी का गाना, 1957 में ये आई थी, भारत भूषण और सुचित्रा सेन की मूवी है ये। सुनते हैं इसको एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही आप सब अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहिए।

0: चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है जो हमारे हिंदी फिल्म जगत से आती है. सबसे पहले हम ना मतलब लिटरली किसी भी खूबसूरत चीज पर जो है वो कुछ लिख सकते हैं, उनको म्यूजिक की माला में जो है वो परो सकते हैं. जो शब्दों की माला है उसमें म्यूजिक में पिरो सकते हैं. फिर उसके बाद जो है एक गायक आता है और बहुत ही खूबसूरती से अपनी गायकी से सामने वाले के लिए उस शब्दों और म्यूजिक के मेल को पेश करता है और ऐसी खूबसूरती से पेश करता है कि आप लिटरली एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हो. कभी आपने सोचा है कि चांद पर गाने लिखे जाते हैं? जी हाँ, नेचर पर गाने लिखे जाते हैं, पेड़ पौधों पर गाने लिखे जाते हैं और किसी की खूबसूरती पर गाने लिखे जाते हैं. जी हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट को उठाता है राइटर और उस पर गाना जो है वो लिख देता है पूरा का पूरा. और क्या खूबसूरत गाने जो है वो लिखते हैं. लेकिन आजकल के राइटर्स उतना खूबसूरत नहीं लिखते. ये पुरानी जो एरा थी, इसी एरा की मैं बात कर रही हूँ, इसी में होता था ये, अब नहीं होता ये सब. जी हाँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे तीन लोग मिलकर ये इतना खतरनाक और जबरदस्त सी चीज जो है ये कर दिया करते थे. इसी के साथ आपको विशाल भारद्वाज और रीना जी की एक खूबसूरत सी प्रेम कहानी मैं आज सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही खास है. और क्यों मैं सुनाने वाली हूँ, वेल आपको पता चलेगा. पहले आप एक और खूबसूरत सा गाना यहाँ पर सुनने के लिए तैयार हो जाइए.
1: लास्ट मिनट पैकिंग पैनिक लीविंग.

जी हाँ दोस्तों, तो मैं अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत अप्स एंड डाउन से जो है वो बनी है, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन हैं उसमें, लेकिन प्यार कैसे जीत जाता है आखिर में, उसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। एंड दैट्स व्हाई मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहती हूँ, और पुराने सेगमेंट में ओल्ड इज गोल्ड में इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये गाने ही ऐसी किसी लव स्टोरी के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अब ये कहानी है फिल्म मेकर, म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर विशाल भारद्वाज और उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज, जो कि खुद एक बहुत ही रिनॉन्ड सिंगर हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि विशाल भारद्वाज एक नॉर्मल इंसान थे और उनके प्यार था रेखा भारद्वाज जी से। जी हाँ, वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रेखा भारद्वाज जी बनना चाहती थी सिंगर। जी हाँ, तो इसीलिए विशाल भारद्वाज ने फिल्मों में अपना काम शुरू किया अपनी प्यार की वजह से, क्योंकि उन्हें प्यार था रेखा भारद्वाज जी से। जी हाँ, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई उनके करियर की तो रेखा भारद्वाज जी को वो गाने मिले ही नहीं और उनको बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा। जी हाँ, उनको प्यार जरूर मिल गया क्योंकि विशाल भारद्वाज इज वन ऑफ द मोस्ट लॉयल पर्सन आई थिंक वी हैव ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। रेखा भारद्वाज जी को गाने नहीं मिले और वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन विशाल भारद्वाज जी सक्सेसफुल हो गए। जी हाँ, उन्होंने जिन्होंने अपने प्यार के लिए रेखा भारद्वाज जी के लिए फिल्म मेकिंग में अपना जो है वो सिक्का आजमाया, उनका सिक्का जो है वो एकदम बाकमाल निकला और उनका करियर जो है वो वहीं से एकदम रफ्तार में चलने लगा। अब जब यहाँ पर उनका करियर नहीं चला, रेखा भारद्वाज जी का करियर नहीं चला, तो वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें प्यार मिल गया लेकिन प्रोफेशन नहीं मिला, वो काम नहीं मिला जिससे उनको प्यार था, और वो अपनी शादी को छोड़ के ओशो के पास चली गई। जी हाँ, अब आप लोग और हम सोचेंगे कि अच्छा, मतलब अपनी शादी छोड़ के ओशो के पास चली गई क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी मर्द, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पति, या तो उसका दिल टूट जाएगा, या तो वो मूव ऑन कर जाएगा, या तो वो अपनी बीवी से अलग हो जाएगा। मतलब यही चीजें होंगी, इसके अलावा तो हम तीसरी कोई चीज सोच भी नहीं पा रहे। लेकिन विशाल भारद्वाज जी ने अपनी वाइफ रेखा जी का इंतजार किया एक साल तक। उसके बाद क्या हुआ? Well, I'm gonna tell you about that. लेकिन एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। Do you want it?

0: रूपा।
1: जी हाँ दोस्तों, तो एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी जो कि लॉयल्टी से भरी है, इंतजार से भरी है, लेकिन फिर भी ना गिव अप करने की एक बहुत ही बाकमाल जिद से भरी है। जी हाँ, बात हो रही है विशाल भारद्वाज और उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज की। मैंने आपको बताया कैसे रेखा भारद्वाज बनना चाहती थी सिंगर, लेकिन उनके लिए विशाल भारद्वाज ने फिल्मों में आने का तय किया। जी हाँ, विशाल भारद्वाज का करियर जो है वो किक स्टार्ट हो गया रेखा भारद्वाज के साथ। ऐसा नहीं हुआ, शादी के बाद जब रेखा को काम नहीं मिला और वो सिंगर नहीं बन पाई उतने अच्छे से, तो वो डिप्रेशन में चली गई और वो ओशो के पास चली गई। जी हाँ, एक साल के लिए वो ओशो के पास चली गई। जी हाँ, विशाल भारद्वाज ने एक साल तक उनका इंतजार किया। जैसे मैंने आपको कहा था, विशाल भारद्वाज ने एक साल उनका इंतजार किया। कौन पति ऐसा करता है? जी हाँ, मतलब कौन करता है, लेकिन विशाल भारद्वाज ने किया। गेस व्हाट, एक साल इंतजार करने के बाद रेखा भारद्वाज के पीछे पीछे वो भी ओशो के पास चले गए। फिर जब दोनों को इस दुनिया का मतलब समझ आ गया, वो सब चीजें समझ आ गई, उसके बाद हुई ओमकारा, जो कि विशाल भारद्वाज की मूवी है, और उसी ही मूवी में गाना आया जुबां पे लागा लागा रे नमक इश्क का। जी हाँ, वही जबरदस्त गाना जिसे गाया रेखा भारद्वाज जी ने, और वहां से उनका करियर किक स्टार्ट हो गया एज अ सिंगर। और फिर उसके बाद इतने लेजेंडरी लेजेंडरी गाने उन्होंने गाए, खूबसूरत गाने उन्होंने गाए। लेकिन ये चीज क्या दिखाती है, ये पूरी की पूरी कहानी क्या दिखाती है, कि वो विश्वास, वो प्यार जो विशाल भारद्वाज ने अपनी पत्नी को दिखाया, मतलब अपनी पत्नी के लिए वो फिल्मों में आए, लिटरली फिल्म मेकिंग बिजनेस में आए, गानों में आए, स्क्रीन प्ले में आए, मतलब वो ये सारी की सारी चीजें जो है उन्होंने अपनी बीवी की वजह से की, अपने प्यार की वजह से की, बिकॉज ही वॉज सो इन लव विद हिज वाइफ, जो कि उनकी पहले गर्लफ्रेंड थी, जो कि उनका प्यार थी पहले। जी हाँ, और जब उनकी वाइफ को डिप्रेशन हुआ और वो ओशो के पास चली गई, तो वो भी एक साल इंतजार करने के बाद उनके पीछे चले गए। कौन करता है, लेकिन उन्होंने अपने वाइफ पर गिव अप नहीं किया, और हमें सुनने को मिली है खूबसूरत सी कहानी, ऐसे थोड़ी ना मिलती। जी हाँ, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और प्यार करते रहिए, बिकॉज प्यार बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, सिर्फ करना नहीं है, निभाना भी है, वो भी जरूरी है। जी हाँ, बाय बाय, सी यू टाटा। ये खूबसूरत सा गाना आप सबके

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन के कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन LNP कन्वेंशन में प्रीमियर का बड़ा ऐलान, ब्रीच बेल गो टू जेल। जी हाँ, कन्वेंशन में LNP कन्वेंशन में क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिस्फोली ने युवा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक कड़े कानून का ऐलान किया है। नए कानून के नाम है ब्रीच बेल गो टू जेल। इसके तहत अगर कोई गंभीर अपराध का आरोपी जमानत पर बाहर रहने के दौरान दोबारा अपराध करता है तो उसे अनिवार्य रूप से जेल जाना होगा। वहीं नए यूथ जस्टिस कानून का तीखा विरोध शुरू। जी हां, प्रीमियर के इस फैसले के बाद ब्रिस्बेन और पूरे क्वींसलैंड में मानवाधिकार और स्वदेशी कानूनी संस्थाओं ने इस कानून का बड़ा विरोध शुरू कर दिया है। नेशनल ऑफ एबोरिजिनल एंड टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लीगल सर्विसेज का कहना है कि अधिक बच्चों को जेल में डालने से समाज सुरक्षित नहीं होगा। वहीं ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। क्वींसलैंड सरकार ने ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट के बीच टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और लोकल टूरिज्म ऑपरेटर्स को विशेष ग्रांट दी जाएगी। वहीं ब्रिस्बेन में फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स की शुरुआत। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक नया फर्स्ट नेशंस कुकरी कोर्स शुरू हो गया है। इसका मकसद वहां के पारंपरिक खानपान और कुकिंग स्टाइल्स को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं बच्चों के लिए डांस प्रोग्राम का बजट खत्म, बंद होने की कगार पर। ब्रिस्बेन से एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर भी है। एबोरिजिनल बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ने वाला एक बेहद पॉपुलर

बैंड इस समय अपने गट्स टूर 2026 के तहत लाइव कॉन्सर्ट्स कर रहा है। ब्रिस्बेन के पास के इलाकों में भी इनके शो होने वाले हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई और गुजरात में भारी बारिश का कहर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मौसम के मिजाज से। मुंबई और दक्षिण गुजरात में मानसूनी बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग आईएमडी ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हालात बिगड़े। उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश से भी मौसम को लेकर चिंताजनक खबर है। वहां लगातार हो रही भारी बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से करीब 26 जिलों के 333 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं उत्तर भारत को गर्मी से राहत। दिल्ली में बदला मौसम। राहत की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल रात से हुई तेज बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया हैंडलूम हैकाथॉन 2026। कपड़ा मंत्रालय ने आज देश के बुनकरों और हैंडलूम सेक्टर को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का चैलेंज हैंडलूम हैकाथॉन 2026 लॉन्च किया है। वहीं भारत और आसियान यानी कि ASEAN के बीच बड़ी व्यापारिक बैठक। जी हां, भारत आज नई दिल्ली में आसियान भारत गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट की 13वीं ज्वाइंट कमेटी मीटिंग होस्ट कर रहा है। इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा भारत और आसियान देशों के साथ व्यापारिक नियमों को आसान बनाना है। वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ में डोनेशन की जांच के लिए कमेटी गठित। राम मंदिर के बाद अब यहां भी तहकीकात जो है वो होनी शुरू हो गई है। इसी के साथ अब सीधा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले पैसिफिक ओशन में चीन का मिसाइल टेस्ट, बढ़ा तनाव। ग्लोबल खबरों की बात करें तो चीन ने पैसिफिक ओशन में अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन से लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। हालांकि इस मिसाइल में डमी वॉरहेड था, लेकिन इस टेस्ट के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी पर दर्ज की चार्जशीट। अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड के खिलाफ लॉस एंजलिस में चार्जशीट दायर कर दी है। इसके साथ इंडोनेशिया में पीएम मोदी का बड़ा बयान, टू स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता। इंडोनेशिया के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मिलकर कई समझौतों पर साइन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका टू स्टेट सॉल्यूशन ही है। वहीं वेनेजुएला में भूकंप के बाद अमेरिका की बड़ी मदद। वेनेजुएला में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां हालात बेहद खराब हैं। अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसके साथ एआई बूम से सैमसंग के मुनाफे में 1800% का उछाल। बिजनेस की दुनिया से एक हैरान करने वाली खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड की वजह से साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इस तिमाही में करीब 1800% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं नाटो समिट के लिए तुर्की पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो समिट में हिस्सा लेने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गए हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले स्विट्जरलैंड पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। जी हां, स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से स्विट्जरलैंड की टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर इतिहास रच दिया। साल 1954 के बाद यह पहली बार है जब स्विट्जरलैंड की टीम वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने पुर्तगाल को किया बाहर। जी हां, वर्ल्ड कप के एक और बड़े नॉकआउट मुकाबले में स्पेन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं यूएसएल चैंपियनशिप सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक और रोड आइलैंड का मैच आज। जी हां, यूएसए की बड़ी फुटबॉल लीग यूएसएल चैंपियनशिप में आज सैन क्रेमेंटो रिपब्लिक एफसी का मुकाबला रोड आइलैंड एफसी से होने जा रहा है।
वहीं ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के

0: ड्रॉ घोषित। लोन बॉल्स बाउल्स के खेल से खबर है कि ऑस्ट्रेलियन इंडोर चैंपियनशिप 2026 के ऑफिशियल ड्रॉ आज जारी कर दिए गए हैं। ये टूर्नामेंट अगले महीने यानी कि अगस्त में क्लब ट्वीट में खेला जाएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
7: Samsung ki mala pe sim room hai.
8: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स। पर लड़की किसी में नहीं मिलती है, ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया. समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं. यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूंगा.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिसानी वंसन ओवाने अंते जी आरजे संदेश और दराल से बने हुए। देखो हिंदी फिल्म या कोई भी फिल्म कह लो, पंजाबी कह लो, हिंदी कह लो या इंग्लिश कह लो, कोई भी फिल्म कह लो, हर फिल्म किसी ना किसी ते आधारित होंगी है। कोई नॉवल तो बनाई जाती है, किसी कोई किसी तो इंस्पायर होती है, कोई किसी की बायोपिक होंगी है, पर जड़िया नॉवल्स तो फिल्म बनाई जाती है ना, उन्होंने इंटरेस्ट थोड़ा जा डिफरेंट तरह का होंगे, तो स्पैशली लोगों के लिए जिहड़े नॉवल लवर होंगे जिन्होंने नॉवल्स बहुत पसंद होंगे। तो अज भी बहुत सारे दर्शकों के बसिया हुई ने फिल्म नॉवल्स से आधारित है। हुण दी फिल्मों की गल नहीं करूंगी, मैं पुरानी दी करूंगी, क्योंकि पुरानी फिल्मों की तो गल ही कुछ होर होंगी सी, जिदे प्यार हुंदा सी, समाज इतिहास इंसानी भावनावां बहुत गहराई दे नाल ते खूबसूरती दे नाल पेश कीतियां जांदियां सी। एक एक करके दस्सदी उन्हां बारे, पर पहलां तुसीं इह गीत सुणो।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
6: I. So the Musayyar.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.4 चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगली जड़ी फिल्म है की है उसका नाम है चित्रलेखा। देखो केदार शर्मा वालों निर्देशित है की है एक पीरियड ड्रामा भगवती चरण वर्मा दे 1934 दे नावल चित्रलेखा ते ही आधारित है की है। नाम भी चित्रलेखा है, नावल का नाम भी चित्रलेखा है। साल 1964 विच रिलीज हुई सी फिल्म। फिल्म की कहानी मौर्य साम्राज्य दे बीजगुप्त ते नित्यांगना चित्रलेखा दे प्रेम की कहानी हैगी, प्यार की कहानी हैगी, लव स्टोरी हैगी है। ए योगी कुमार गिरी भी इस विच शामिल है ते अशोक कुमार प्रदीप कुमार ते मीना कुमारी लीड रोल दे विच हैगे ने। बहुत ज्यादा सोहनी हैगी है, जदों ब्लैक एंड वाइट का जमाना हुंदा सी उस टाइम की।

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए। हुण जी फिल्म आई सी ना पति पत्नी, और वो थोड़े साल पहला कार्तिक आर्यन की भूमि पेड़ निकर ते अनन्या पांडे की, एक पति पत्नी जिहड़ी दी ओजी पति पत्नी सी उसकी गल कर लैने आं। ये 1978 विच आई सी, बासु चैटर्जी की कॉमेडी ड्रामा जो कमलेश्वर दे नॉवल पति पत्नी और वो ते आधारित हैगी। फिल्म विच संजीव कुमार सी, विद्या सिन्हा सी ते रंजीता लीड रोल दे विच सी। ए एक काल्पनिक जी मतलब दर्शाई गई प्रेम कहानी है जो कॉमेडी ते इमोशन दे नाल भरी हुई है ते समाजिक रिश्तियां ते व्यंग भी कसती हैगी है। बहुत सोहनी है, देखना चाहोगे तो थानू यूट्यूब ते मिल जानी है।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
2: आया क्या?
3: आएगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

याद रखना, सपने तुम्हारे हैं, तो उन्हें पूरा भी तुम ही करोगे। ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। गौतम बुद्ध के इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं आज के जीवन के आधार का, यानी जीवन आधार का। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर श्रोताओं और जीवन से जुड़े इस खास सफर में आज एक बार फिर से आपके साथ मैं सताक्षी हूँ। जी हाँ, कितनी शुद्ध बात है ना कि अगर सपने हमारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भला कोई और क्यों ले। हमने सपने देखे हैं, हमने सपने बुने हैं, तो उन्हें पूरा भी हम ही करेंगे। और ये दुनिया, इस दुनिया के लोग, इस दुनिया के हालात जरूर हमारा रास्ता रोकेंगे, हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे फेवर में नहीं होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने हमारे हैं तो हम जिएंगे और पूरे करेंगे। इसी बात के साथ शुरुआत करेंगे रेडियो ब्रिस्वानी पर आज के जीवन आधार की इस अगले गीत के साथ। दोस्तों, मैं हूं सताक्षी, रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए जीवन आधार।

अगर आपने खुद को नहीं बनाया ना दोस्तों, नहीं संवारा, नहीं खोजा, अगर आप दुनिया की भीड़ में यूं ही भटकते रहे तो यकीन मानिए आपको कुछ ऐसे लोगों के राय पर, ऐसे लोगों के डिसीजंस पर डिपेंड रहना पड़ सकता है जो असल मायने में, सही मायने में खुद को भी नहीं जानते हैं। जो खुद ही भटक रहे हैं वो आपको समझाने आ जाएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। इसलिए खुद की खोज कीजिए, खुद को जानिए, खुद को समझिए, खुद को ऊपर उठाइए और खुद को जीने लायक बनाइए। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर श्रोताओं, ये सफर है जीवन के आधार का, हमारा और आपका खास सफर जीवन आधार। और इस सफर में सताक्षी के साथ आप आज एक बार फिर से जीवन से और जीवन से जुड़ी बातों से जुड़ रहे हैं। आइए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं और एक गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

कहते हैं कि हम सबको अच्छा बनना चाहिए, कहते हैं ना भाई अच्छाई जरूरी है, सबके अंदर होनी चाहिए। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई साबित कैसे करेंगे? और ये अच्छाई और बुराई का खेल किसी और से नहीं, आपको खुद से खेलना है। आपके अंदर अगर बुराई है तो उसे बाहर निकालकर अपनी अच्छाई को उस बुराई पर हावी करना ही तो जीवन है। और ये छोटी छोटी सी बुराइयां हम सब में होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई रावण हो। स्मोक की आदत, ड्रिंक की आदत, किसी को कड़वा कह देने की आदत, आर्ग्यूमेंट की आदत, ये सारी आदतें जो हैं, या इस तरह की और भी बहुत सारी आदतें, ये एक्चुअली बुराई हैं। उन बुराइयों को एक एक करके बाहर निकालिए और अपनी अच्छाई को उस पर हावी करिए और उस बुराई को भगाइए। इसी का नाम जीवन है और यही अपनी बुराइयों पर विजय पाना है। आइए आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ, एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

जीवन को समझने की एक और कोशिश का नाम है जीवन आधार, जिसमें हर रोज की तरह आज भी श्रोताओं आप सताक्षी के साथ हैं और अपने जीवन पर, इसकी वास्तविकता पर हम ध्यान लेकर जा रहे हैं अपना, और इसे सरल और सार्थक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसे ही गीत के साथ अभी इसी सफर में आगे बढ़ूंगी। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए यूं ही मेरे साथ।

डीजी प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार आप सुन रहे हैं और अपने जीवन को सवारने की, सजाने की और समझने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। जीवन में जब भी टफ टाइम आता है, बुरा वक्त आता है, तो क्या करते हैं? किसी पंडित, किसी महात्मा के पास जाके अपनी कुंडली दिखाते हैं कि महाराज मेरे जीवन में ये दुख भला क्यों आया है। उस वक्त घर में वास्तु दोष नजर आने लगते हैं, पितृ दोष नजर आने लगते हैं, शनि दोष नजर आने लगते हैं और आप सबको दूर करने के उपायों में लग जाते हैं। ये सब तो याद आ जाते हैं आपको, लेकिन एक दोष है जो आपको उस कठिन घड़ी में कभी याद नहीं आता, खुद का दोष। आप ये भूल जाते हैं कि आपके जीवन में वास्तु दोष भी अगर आया है तो वो आपके कर्मों की वजह से ही आया है। अगर आपके कर्म ठीक होते तो वो वास्तु दोष आपको घेरता ही नहीं, क्योंकि आपको उसमें फंसना ही नहीं होता ना। ये जीवन चक्र है श्रोताओं, और इस जीवन चक्र में आप जिस भी चक्र में फंस गए हैं ना, वो आप ही के कर्मों का नतीजा और उसका फल है। तो अगली बार पितृदोष, वास्तु दोष, शनि दोष, ये दोष, वो दोष, किसी भी दोष को देखने से पहले ये देखिए कि कहीं आपने जाने अनजाने कुछ ऐसा तो नहीं किया है जिसका परिणाम है वो दोष। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ, और चलिए आगे बढ़ते हैं इस एक और गीत के साथ।

पाकिस्तानी 1701 एम पर जीवन के आधार से जुड़ा ये खास सफर जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ आज एक बार फिर से हैं श्रोताओं। और परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक वक्त तक सब कुछ आपके साथ रहता है, आपके हित में रहता है, या आपकी जिंदगी में अस्थिर रहता है, आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, आपके विरुद्ध होता है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ सब कुछ बदलता है। एक वक्त के बाद सब कुछ बदलता है, अच्छा बुरा सब बदल जाता है। किसी का हृदय परिवर्तित हो जाता है तो किसी का समय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि अगर समय अच्छा है तो गर्व मत कीजिए। अगर आज आपके आसपास लोग हैं तो ये मत कहिए कि आपके पास सारी दुनिया है, और अगर समय बुरा है तो धैर्य मत खोइए। वक्त बदलेगा और सब कुछ परिवर्तित होगा। सुनते रहिए जीवन आधार, रहिए सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन का खास सफर, जीवन आधार, जिसमें सताक्षी के साथ आप जीवन की ही कुछ खास बातों को सुन रहे थे और उनका आनंद ले रहे थे। कुछ ऐसे ही खास बातों के साथ और गीतों के साथ हम और आप मिलते रहेंगे कल एक बार फिर से हमारी और आपके जीवन की नई शुरुआत के साथ ही हमारे सफर की नई शुरुआत होगी। आज लूंगी विदा, नमस्कार।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Good morning, Brisbane. Namaskar, Sat Sri Akal, Adab aur Jai Shri Krishna, dosto. Main hoon aapki dost aur host, RJ Chani Jain aur aap sabhi sun rahe hain Radio Briswani mein program Chani Ka Safar, jahan har subah hoti hai positivity, music aur dher sari information ke saath. Dosto, आज की सुबह जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही खूबसूरत हो आपकी लाइफ। अगर आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पर हैं, या फिर घर पर चाय की पहली सिप एंजॉय कर रहे हैं, तो अगले एक घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ। तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू करते हैं आज का शो चांदनी का सफर, ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी। जाइएगा कहीं भी मत, एंजॉय कीजिए ये ट्रैक।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है दोस्तों जो हर नए दिन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इसीलिए कल की जो टेंशन है ना उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और आज की शुरुआत जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे हेडलाइंस की, यानी कि कुछ मॉर्निंग की हेडलाइंस जानेंगे जहां पर खास खबरों की जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड में जुलाई के दौरान कई कम्युनिटी इवेंट्स और फैमिली फेस्टिवल्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। अगर आप वीकेंड आउटिंग प्लान कर रहे हैं तो ऑप्शन काफी अच्छे हैं। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद और भी बहुत सारी हेडलाइंस। आप सभी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

0: इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पर अगली हेडलाइन की बात करें तो स्टेट ऑफ ओरिजिन के फाइनल मैच के बाद स्पोर्ट्स फैन में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इसकी चर्चा हो रही है। वहीं पर ब्रिस्बेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिटी डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है, जिससे आने वाले सालों में ट्रैवल और भी कन्वीनियंट होने की उम्मीद है। वहीं भी दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो हल्का जैकेट साथ जरूर रखना ना भूले, क्योंकि सुबह और शाम के जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा कूल रह सकता है। इसीलिए अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, पानी पीना मत भूलिए और ड्राइव सेव कीजिए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।
1: क्या कहा?

हाँ जी, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी भी ना अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर मत करने दीजिएगा। हर इंसान का अपना टाइम होता है, बस मेहनत करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। याद रखिए, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो आइए फिर, अब वक्त हो चुका है आप सभी के बीच एक ब्यूटीफुल सा गाना लगाने का, जो आपकी मॉर्निंग को और भी फ्रेश बना देगा। सो एंजॉय कीजिए अपना ये फेवरेट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी, और आशा करती हूँ आपको ये ट्रैक अच्छा लगेगा।

हाँ जी, जहाँ इतनी बातें होगी वहाँ पर एंटरटेनमेंट बस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट दुनिया से एक अपडेट है। इंडियन सिनेमा के जो कई बड़े स्टार्स हैं वो अपने नए प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में काफी बिजी दिखाई दे रहे हैं और फैंस उनके अपकमिंग फिल्म्स के बेसब्री से इंतजार कर रही है। म्यूजिक लवर्स के लिए भी नए सिंगल्स और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो है उनके ट्रैक्स जो है काफी ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई भी फेवरेट गाना है तो हमें जरूर बताएं ताकि हम आपकी पसंद का गाना अपने इस रेडियो में जरूर बजा सकें। दोस्तों, वैसे आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को लैंड डाउन अंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। जी हाँ, लैंड डाउन अंडर। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। और रीटा ब्रिस्वानी

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी। तो आइए थोड़ी सी नजर डालते हैं कुछ गॉसिपिंग्स में। दोस्तों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ना अपनी फिटनेस को लेकर काफी डिसिप्लिन रहते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट और हेल्दी डाइट उनकी डेली रूटीन का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। कई बार हम बोलते हैं ना, वाह यार कितना मेंटेन करके रखा है, लेकिन दोस्तों उस मेंटेनेंस में ना बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, अपने आप का खून पसीना जो है वो एक क्या होता है, काफी मेहनत होती है उस अच्छे फिगर को मेंटेन करने में। तो इसीलिए जब, अगर कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, जी हाँ ये बात सच है, अगर हम ठान लें तो वो चीज पा सकते हैं। वहीं अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर सेलिब्स के जो ट्रैवल डायरीज है और बिहाइंड द सीन्स वीडियो है वो फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन आर्टिस्ट के लाइव शोज और कॉन्सर्ट जो है उसको लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। तो ये थी आज की गॉसिप्स बहुत सारी। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रसवानी।

हाँ जी, वेलकम बैक है जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो आप सभी ने बहुत प्यारे प्यारे गीत सुने, एंजॉय किए ये प्यारे प्यारे गजल भी, और इन प्यारे से म्यूजिक के साथ साथ आप सभी ने बहुत सारी अपडेट्स, गॉसिप्स, वेदर अपडेट, ब्रिस्बेन की न्यूज, ऑस्ट्रेलिया न्यूज, बहुत सारी बातें आज आप सभी ने जानी है। और आशा करती हूँ जाने के सफर प्रोग्राम में आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक्स ऐसे ही देते रहें ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है बनता रहे और मैं आगे आप सभी को बहुत सारी अपडेट्स और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करती रहूं। इसी के साथ मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। हैव अ वंडरफुल डे।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरानी सरकार, एक कैंसर जड़ से खत्म करना होगा, तेहरान के साथ दोबारा सीज फायर पर बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतरिम एग्रीमेंट खत्म हो गया है, लेकिन वो बातचीत जारी रखेंगे। जब सीज फायर के स्टेटस के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, उनके साथ डील करना बस टाइम वेस्ट करना है। पाकिस्तान की मध्यस्थता में वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते का मकसद एक स्थायी समझौते के लिए बातचीत के वास्ते 60 दिन का समय देना था, लेकिन कतर में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत पिछले हफ्ते बिना किसी नतीजे खत्म हो गई थी। मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का भव्य समापन, 5 फाइटर जेट से दी गई सलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को अपनी इंडोनेशिया की 3 दिवसीय यात्रा पूरी करके जकार्ता से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। इस दौरान इंडोनेशियाई वायुसेना के 5 फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के प्लेन को इंडोनेशियाई हवाई अड्डे से बाहर तक स्कॉर्ट किया। जब फाइटर जेट्स उनके विमान के साथ चल रहे थे तो पीएम मोदी ने विमान के अंदर से उनका अभिवादन किया। पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होने से पहले इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुम्बियांतो ने हवाई अड्डे पर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को विदा किया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत के 7 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। भारत के ज्यादातर सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में भारत के आधे से ज्यादा इलाकों में खूब पानी बरसा है। कहीं इस बारिश से लोगों को राहत मिली है तो कहीं बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश होने की आशंका है और इसीलिए इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश में नाव पलटने के बाद लापता 6 मछुआरों के मारे जाने की आशंका, नौसेना ने बंद किया सर्च ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट के पास लापता हुए मछुआरों के लिए सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। बीते 4 जुलाई को उनकी नाव पलट गई थी, जिससे उनके जिंदा मिलने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के 4 दिन तक चले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी मछुआरों का कोई पता न चल सका। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ FBI का ऑपरेशन, दुनिया भर में 50 से ज्यादा ठिकानों पर मारा छापा। अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। ऑपरेशन हॉट बॉल के नाम से शुरू किए गए इस अभियान में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के विभिन्न देशों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस बड़ी कार्यवाही में लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आइए जुड़ते हैं अब खेलों से और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। लॉर्ड्स में होगा अंतिम सलाम, टैमी ब्यूमोंट ने किया संन्यास का ऐलान, भारत के खिलाफ खेलेंगी विदाई टेस्ट। भारत और इंग्लैंड महिला टीम के बीच 10 जुलाई से इकलौते टेस्ट मैच का आगाज होगा। लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाले इस मैच के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाज टैमी ब्यूमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगी। 35 साल की ब्यूमेंट ने नवंबर 2009 में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में 260 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वो 12 शतक लगाकर इंग्लैंड की महिला टीम की ओर से सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाली खिलाड़ी हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो विजवानी पर। बहुत सा प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अमिता नमस्ते,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग
2: एंड
1: रश्ड मॉर्निंग। We were debating about starting coming program today. I almost didn't make it. But I'm here and आप सब कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, ओके, चले यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हमारा वेदर क्या कह रहा है। वेदर में कहा गया है कि शावर ओ टू टूडे 12 and 22 रहेगा। कल भी शावर ओ टू 12 and 21 रहेगा। सैटरडे को मोस्टली सनी 10 and 22। संडे को शावर ओ टू 13 and 23। मंडे को सनी है 10 and 22। गेट रेडी फॉर दैट। ट्यूजडे सनी 9 and 21, नो रेन। वेंसडे को 9 and 21, नो रेन। ऑलराइट, सो ये रहा यहाँ ब्रिस्बेन का वेदर। और व्हाट्स हैपनिंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में देखते हैं दोस्तों रास्ते का क्या हाल है। माउंट कॉटन रोड, माउंट कॉटन मल्टी व्हीकल क्रैश लेन और लेन्स ब्लॉक्ड बोथ डायरेक्शन। रास्ता स्टैंड स्टिल है मुझे लग रहा है दोनों बगल से। इफ स्विच रोड मरुका क्रैश साथ बाउंड जो हुआ था ये क्लियर हो गया। और जी हाँ, यहाँ पर इफ स्विच रोड मरुका में मल्टी व्हीकल क्रैश हुआ था लेकिन ये क्लियर
2: आए। It left a backlog.
1: Yeah.
2: So the traffic's backed up. You can see it.
1: Yeah.
2: Well, when I was coming, okay. But maybe now it's clearing.
1: All right. So that's about it. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। While we settle down a little bit, we'll have to listen to our song. एक गाना हमने सोचा था।
2: Yeah, got it.
1: You know?
2: Yep.
1: जो गाना।
2: Yeah. We okay. were singing
1: Can you
2: yesterday.
1: Please play that one?
2: Okay,
1: yeah. All right, here we go.
2: Yes.
1: I don't know why, but we just thought of it.
2: It just, yes, yeah. So we have to hear it out.
1: Okay,
3: Kabhi humne

हमें पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो

है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सुना।

0: ओके तो ऐसे ऐसे बात है दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे हो जाता है, कभी कुछ हम भूल जाते हैं और कहते हैं अपने तो अपने होते हैं, जो अपने होते हैं उनको भी हम थोड़ा प्रायोरिटी में कम जगह रखते हैं ना.
1: Well, yeah, I think you take people for granted. But
0: do you take people for granted? I don't know. अपने तो अपने होते हैं ना. Not necessarily family only.
1: Of course, yeah, that's true.
0: I have learned this lesson in my life.
1: Mm.
0: That is not only family. Some of your very true friends probably have a higher place than your own family. Honestly. I've experienced a lot of things in life, you know, the flooding and everything, and the amount of people that came up and helped. It's amazing, you know. There's still a lot of good people in this world. Yeah, I never forget those two young girls giving out sandwiches from the, you know,
1: truck,
0: from the boot of the car. You know, oh, so well prepared with a note and everything.
1: With a note.
0: In the note.
1: Oh, that's nice.
0: It was so nice. I'll never forget that. छोटे छोटे जो ऐसे काम हैं, छोटे छोटे बातें हैं दोस्तों, ये दिल को छू जाता है और हमेशा याद बन के रह जाता है ना. सो ये अच्छा काम करते रहे आप. एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि आप इस दुनिया में फॉर एवर नहीं है. वी ऑल नो दैट बट वी पुट इन द बैक ऑफ आवर हेड व्हिच इज फाइन बट शायद इसको हम याद रखें तो लाइफ कुछ और हो सकता है. हम बहुत लकी है कि हमें डेट बर्थ डेट याद रहता है कि हम कब पैदा हुए वो याद है. थैंक गॉड द लॉर्ड नेवर टोल्ड अस व्हेन इज द एक्सपायरी डेट. अगर हम सबको अगर पता रहता कि हम कब जाएंगे, आई टेल यू द वर्ल्ड वुड हैव बीन डिफरेंट एंड इट विल बी अ वेरी what you call it? Very gloomy kind of life, wouldn't it?
1: Do you think so? I think people would start
0: doing all these things,
1: doing
0: right?
1: The best they can, I think.
0: No, that's true.
1: They'll know their days are numbered, you know.
0: Well, we still know that our days are numbered. Only thing is it's not stamped, right?
1: Right. Date. Yeah, but some people think they're going to live like
0: forever.
1: Don't
0: we go by that? That our days are numbered. Let's do all good things we can do. Enjoy life, do good things, be kind to other people. और कुछ आपके साथ नहीं जाएगा दोस्तों बहुत दिन याद. आप अगर मैं चला गया तो आप लोग मुझे शायद याद करोगे एक महीना दो महीना, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता हम सब अपने अपने काम पे लग जाएंगे. ठीक है. तो दिस इज सच इज लाइफ. डोंट टेक इट टू सीरियसली एंड डोंट हर्ट अदर्स अलोंग द वे. ओके. ऑलराइट. चलो हैविंग सेड ऑल दैट, एक अच्छा सुंदर सा रोमांटिक गीत.
1: ओके,
0: आई गॉट वन.
1: ओके, ऑलराइट.
0: थर्सडे यूजुअली इज माय डे टू, यू नो. ओके, सुनो इस गीत को अच्छी तरह से.

0: और उम्मीद है ये गीत आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। गीत तो सब अच्छे होते हैं, बट डिपेंड्स कब हम सुनते हैं और उनके साथ कौन सी यादें जुड़े हुए हैं। हर गीत के साथ कुछ यादें हैं दोस्तों, इसीलिए जब कहते हैं ना, जब आरजे लोग गीत बजाते हैं तो वे अगर कुछ रेलेवेंट कहते हैं इन द म्यूजिक दैट्स फाइन, लेकिन अगर अचानक से ऑफ कर देते हैं, कुछ और कहने लगते हैं, तो वो जो तार है टूट जाता है। इसलिए आई टेल ऑल माय प्रेजेंटर्स नॉट टू डिस्टर्ब द सॉन्ग,
1: डोंट, बिकॉज़ यू नेवर टॉक ओवर द सॉन्ग,
0: यू नो, डोंट नो आदमी कहां पहुंच जाता है गाना के साथ।
1: एंड यू लेफ्ट मिड एयर,
0: या दैट्स अ हैंगिंग इन मिड एयर, नॉट लेफ्ट मिड एयर,
1: हैंगिंग
0: इन मिड एयर,
1: यू लेफ्ट हैंगिंग इन मिड एयर, that's a bad one.
0: Ouch. Yeah. Okay, you're playing something.
1: Am I?
0: Yeah.
1: Oh, that's not fair. You didn't tell me.
0: No, I mean, come on.
1: Okay, I will play something.
0: You had to do that.

0: दोस्तों, गाना कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चलो एक दो ये सुन लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। और याद रखिए, इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
0: ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो यू कैन कम, और हम आपको जरूर या विल वेलकम यू टू से समथिंग, जो हमारे समाज, हमारे लिसनर्स के लिए ठीक हो। ओके,
6: वेल आई एम ग्लैड यू क्लैरिफाइड दैट।
0: व्हाई?
6: यू कांट जस्ट कम एंड से एनीथिंग।
0: No, our people, our yeah. listeners, how long have we been broadcasting?
6: About 30 years, I think.
0: I've never, ever come across anybody that has said or has been rude or anything on the radio. Honestly, I can't remember. Can you? No, I don't think so.
6: Not on radio?
0: No, otherwise be. People have been very kind to us. Thank you so much.
6: All right.
0: Okay.
6: My turn.
0: Okay.
7: That reminds me of that egg.

0: Oh, this is a very tough situation, eh?
1: Tough situation,
0: yeah.
1: Man.
0: Why did I play it?
1: I don't know.
0: Oh. ओके ऑलराइट चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. गाना तो गाना है लेकिन एक कोई इसको एक्सपीरियंस तो किया होगा इसीलिए तो लिखते हैं फिर ना.
1: या
0: जैसे अगर छोटा बच्चा को बोल दो गजल गाओ तो उतना मिठास नहीं रहेगा बिकॉज गजल जो है इट्स अ लॉट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस. ऐसे ऐसे बात है दोस्तों दुनिया में
1: लोग.

0: चलिए एंटरटेनमेंट के साथ कुछ हम थोड़ा ऐसे ध्यान ज्ञान के भी बात करेंगे दोस्तों। कहा गया है कि जब इंसान पहले आए थे दुनिया में तो दे वर इन अफ्रीका एंड वी वर डार्क कलर्ड, राइट, विच आई सॉर्ट ऑफ बिलीव। बट देखिए भगवान और नेचर किस तरह से खेल खेले हमारे साथ। और जैसे आप जानते हैं जो हमारा ही प्लेनेट अर्थ है इज गॉट अ टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्रीज, राइट, एंड दिस इज व्हाट गिव्स अस द सीजंस, फोर सीजंस। नाउ people that are closer to the equator, right, that part of it, are mostly dark people.
1: Yep.
0: क्योंकि वो हमेशा सन के साथ रहते हैं, राइट, बिकॉज द टिल्ट अफेक्ट्स मोर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो इफ यू कैन इमेजिन द वर्ल्ड इज टिल्टेड बट इन द मिडल पार्ट इज ऑलमोस्ट द सेम, सो पीपल ओवर देयर आर मोस्टली डार्क कलर। सो व्हाट हैपन्ड, जब ये काले लोग धीरे धीरे माइग्रेट होना शुरू किए हैं मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, तो बिकॉज ऑफ द सन ऑब्जॉर्प्शन, राइट, जो सन के पास थे क्लोजर रिमेन डार्क,
1: right,
0: and slowly the DNA started changing of all the other black people that went to the further north and south as you go, right? So the color DNA started changing because they had to absorb sun, so they became fairer and fairer. Now there was one instance I remember in America, a lady gave birth to a black kid.
1: Oh, what problems she must have went through.
0: No, they did the DNA test and that proved it. That goes to prove that hamare ancestors, hamare DNA mein hai wo cheez. Theek hai? Oh, it was a big hoo-ha about the whole thing. And then finally, you know, husband trusted his wife, right? And then they did some tests, and then where they found out that it was a DNA
1: way back,
0: signature that came along. Okay. Phir main soch raha tha ki kuch phal aise hai dosto, कि अगर उसको विंटर ना मिले तो वो फल नहीं देगा। जैसे एप्पल है, पीचेस है, ये सब बिकॉज उनका जो सैप, वुड यू से इट्स देयर ब्लड?
1: नो,
0: व्हाट इज सैप फॉर द ट्री, समथिंग लाइक,
1: ओके, वेल इट गोज टू द रूट,
0: ठंड में वो पेड़ से नीचे चला जाता है रूट में, एंड द ट्रीज, दैट्स व्हाई दे कॉल द ट्रीज हैव गॉन डोरमेंट। तो जब वो सैप नीचे जाता है रूट्स में, वहां पर और मजबूत बनकर फिर वो आता है, एंड दैट इज ऑल डन विद दिस फोर सीजन्स, एंड द सीजन यू गेट इज बिकॉज द लॉर्ड हैज मेड द वर्ल्ड एट अ टिल्ट, 23.5 डिग्री टिल्ट। सो एज इट गोज राउंड द सन इन 365 डेज, राइट, it goes around the sun. While it's rotating on another speed, but it's going around the sun at 365 or whatever. That's how we have our days, right? तो उसी में जब वो जाता है तो फिर नजदीक आता है सन को, तो वो धीरे धीरे आता है स्प्रिंग, फिर समा, फिर जैसे घूमता है फिर ऑटम जाने लगता है क्योंकि अब वो दूर होने लगा सन से, फिर विंटर। इस तरह से पेड़ पौधे जो है, यू नो द हाउ वर्क। सो जस्ट इमेजिन, आई वॉज थिंकिंग, देखो नेचर and Lord's play is such a great thing, such isn't it? How it's all designed.
1: Yeah.
0: तो आपको माइंड थोड़ा फ्री रखना चाहिए ताकि आप ऐसे चीज को सोच सकें मेरे ख्याल से। लेकिन that is how it works. That tilt has given us the fourth season. Okay, जो हमारे बच्चे हैं, अगर बच्चों से पूछेंगे आप तो बच्चे बताएंगे आपको, they're too good. Okay. We lost the origin game.
1: I know that.
0: Yeah.
1: I said that in the morning.
0: I thought the way they started, I thought they will win, man. But they, did you say this morning?
1: I did.
0: It was so funny. Arush had his phone.
1: Yeah.
0: With the game playing, and then he was doing something on the computer.
1: Something else, yeah. Actually, I had the TV on and I was
0: looking
1: for songs. Yeah,
0: break.
1: I stopped.
0: Yeah.
1: I think it was halftime. I said, oh, that's it. I put the TV off.
0: And I thought maybe I'm the jinx, you know, if I put it off, then maybe.
1: I also thought, I said, if I put it off, maybe. But I checked the news before I went to sleep. I said, let me check the news. I went like after 10, I checked. I said, oh, no.
0: Oh, anyway, that's all right. Better team always wins, right?
1: Yeah. Whoever plays the better on that day, that's it. I mean, there's no guarantees, right?
0: Yeah, true. So, ये गीत में देखिए, हम काफी ग्लोबल हैं। अभी यहाँ पर तो सुबह है, लेकिन कहीं पर भी शाम होगा, अभी रात, ठीक है? लेकिन चलो, एक ऐसा गीत है दोस्तों जो आप सभी के लिए है।

0: उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। समय भाग रहा है, 20 मिनट रह गया है, और आपको याद दिला दूं आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ। 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम रहेगा और फिर 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सुन नहीं पा रहे भी, अभी आप रेडियो से सुन रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्यूटर से भी सुने, तो मैं जानता हूं कि हमारा अभी वो नहीं है, लेकिन यू गेट ट्यून इन, TUNEIN, ट्यून इन डाउनलोड कीजिए दोस्तों। इसमें कुछ नहीं आपको खर्च पड़ेगा, उसमें जाकर ब्रिजवानी आप खोज ले, और बस एक बार आपको करना पड़ेगा, सर्च कर ले आप, फिर उसके बाद में आप वहां से भी सुन सकेंगे, ठीक है।
1: रेडियो गार्डन,
0: रेडियो गार्डन, देयर सो मेनी वेज, रेडियो गार्डन और ट्यून इन, ओके। सो थोड़ा पहले एडेड आएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में एड नहीं आएगा। तो प्लीज आप ब्रिजवानी को सुनते रहे इस तरह से, ठीक है, ओके। समय कम है,
1: ओके, लेट मी कीप गोइंग।
0: कॉफी में चीनी कम है।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सुप्रभात, राम राम। भाई कैसे हैं सब? सब कुछ मजेदार, जबरदस्त। वैसे उठ जाइए क्योंकि भोर हो गई है और सुबह की किरणें आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए बेकरार हैं। चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी हवा के झोंकों के साथ आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिविटी का रंग घुलने के लिए एकदम तैयार है और इस रंग को आप तक पहुँचाने के लिए पहुँच चुकी है सुबह एक बार फिर से सताक्षी आप सबके दरवाजे पर। जी भाई, दरवाजे पर नहीं, गलती हो गई भाई, हम तो सीधे आपके घरों में एंटर कर चुके हैं। जी हाँ, और इस वक्त आपके रेडियो सेट्स के जरिए आपके कानों में अपना रंग घोल रहे हैं। वैसे सताक्षी तो आ गई है, लेकिन इस सुबह कितनी देर से उठने का इरादा है और क्या क्या रूटीन आज फॉलो करने का इरादा है भाई, मुझे भी बताइए। और इस सुबह के साथ दस्तक तो हमने दे दी है, लेकिन इस दस्तक का आगाज और इसकी गूंज जो है वो इस गाने के साथ आपको सुनाई देगी। इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

इवेंट हैपेंस सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रिजू ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इट हैपेंस के सुनहरे सफर में सबसे पहले बात होगी उनसे जो आज बहुत ही स्पेशल और खास है। जी हाँ, अगर आपका जन्मदिन है, बर्थडे बेबीज, बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। देखिए, 365 दिन हर रोज जिंदगी के एक पेज के हमें मिलते हैं, है ना। जब साल की शुरुआत होती है तो बेसिकली हमारे पास होती है एक डायरी, या मैं तो ये कहूँगी जब आपके बर्थडे की शुरुआत होती है तो आपको ये 365 दिन मिलते हैं और हर एक दिन आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत आगाज बन जाता है। तो आज से बेसिकली आपको आपकी डायरी मिलने वाली है, यानी वो 365 पेजेस जिनके साथ आप हर रोज़ कुछ बढ़िया लिख सकते हैं। सो बर्थडे मुबारक हो। और जिनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उन्हें एक ऐसी डायरी मिल रही है जिस पर वो अपने और अपने हमसफर की कहानी लिख सकते हैं, अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख सकते हैं। जी हाँ, बर्थडे बेबीज आप भी हैं, लेकिन आप अकेले बर्थडे बेबीज नहीं हैं। आज आप बर्थडे बेबी इसलिए हैं क्योंकि आज आपके साथ एक साथ जुड़ा था, है ना, वो साथ जिसने जिंदगी भर आपका साथ देने का वादा किया था। तो आज आप दोनों का बेसिकली बर्थडे है क्योंकि कहते हैं कि शादी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सो आपको वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, और जिनके लिए है दिन स्पेशल और खास उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए फिर आपके नाम प्ले करते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम।

हर अंधेरा जब छटता है और सवेरा आता है, तो सवेरा आपके लिए हर रोज एक कोरा पन्ना लेकर आता है, यानी कि ब्लैंक पेज। और उस ब्लैंक पेज पर क्या लिखते हैं, ये आपके हाथ में है। आप चाहे उस पर कल की चिंताएं लिख दें या आज की उम्मीदें लिख दें, टोटली आप पर डिपेंड करता है। वैसे मेरी मानिए तो आज अपने ब्लैंक पेज पर लिखिए अपनी प्यारी सी स्माइल, उसके रीजंस, मतलब वो कौन कौन सी वजह है जो आपको हंसा सकती है, है ना। और हाँ, ये लिखना मत भूलिएगा कि उन वजहों की वजह आप ही हों, क्योंकि अगर आप किसी और पर डिपेंड होंगे और अपनी मुस्कुराहट खोजेंगे तो फिर एक भी कॉलम आप भर नहीं पाएंगे। तो वो कौन सी वजह है जिसमें आप खुद को मुस्कुराने की वजह दे सकते हैं, सोचिए और मेरे साथ सुनते रहिए। अगला ट्रैक एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड, आपका अपना रेडियो ब्रिस्वानी।

मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वेलकम बैक, रेडियो प्रसवानी पर सदाक्षी के साथ आप हैं और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस गाने के इस पार। वैसे कई बार हम दिन की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि आज का काम कैसे होगा, लाइफ में सक्सेस कब मिलेगी। लेकिन सच तो ये है कि सक्सेस किसी जादू का नाम नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तो आपकी छोटी छोटी कोशिशों से आपको मिलती है। और छोटी सी कोशिश से मिली छोटी सी सक्सेस भी आपकी जिंदगी की सक्सेस ही होती है। तो बस आज अपने काम पर निकलिए तो ये सोच कर निकलिए कि आज आपको अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो बस आपको अपना बेस्ट देना है। और उसी पॉजिटिव एनर्जी के नाम आइए सुनते हैं ये अगला ट्रैक, एंजॉय कीजिए और सदाक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

तीन बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर। दोस्तों, रोज की भागदौड़ में हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं और वो है हमारी सेहत, हमारी हेल्थ। जी हाँ, और इसीलिए एक बहुत बढ़िया सी हेल्थ टिप इस सुबह आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, सुबह उठकर आपको, मैं जानती हूँ, आदत है चाय की, कॉफी की, और ठीक है यार, मतलब रिफ्रेश हो जाते हैं आप इससे, लेकिन चाय या कॉफी का कप अपने हाथ में थामने से पहले एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी का थाम लीजिए। और ये पानी जब आप पियेंगे तो आपको बहुत फायदे होंगे, जैसे कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसके साथ ही आपको दिन भर एनर्जी से भी भरा रखता है, क्योंकि आपका बॉडी फंक्शन जो है बहुत अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है। और हाँ, अगर हो सके तो 10 मिनट के लिए बालकनी या छत पर जाकर गहरी सांस लें, क्योंकि आपकी जो ब्रीदिंग है ना, उसको आप सही तरीके से अगर यूज करते हैं या आप उसे सही तरीके से करते हैं तो ये किसी टॉनिक से कम नहीं है, क्योंकि सुबह की ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव होती है, बहुत ही प्योर होती है, और वो प्योर ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के लिए किसी भी टॉनिक से कम नहीं है। तो भाई, सेहत की बात बहुत कर ली, मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो गया और ऑक्सीजन भी आप तक फ्रेश पहुंचा दी, लेकिन फिलहाल अभी चलिए आपके लिए एक बढ़िया सा गाना प्ले किया जाए, है ना? तो एंजॉय करिए इसे और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर।